0: तुमको वाह भी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी के वालों ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु सानुए मानो फेरुवना जान जो के इतने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ याजा उन रो सही लांस इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदितना फालंजा फापुआरी आफाना यंग चुमा मेचा के फावे निफिशीना फालंजा फापुआरी देख फानेरीना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनान्फ

0: तुम कुफा भी
1: रेफमिसि नि फितुराना छजाकन फवका छिमैति यम निनारन नि फिलारंबे जे छितुना पास फिलारंबे आरा छचापनारो नि फवे छिनेति फितुनानारो ति फतुगुनियाला नि रिटनि नंबर फुलतोला रावो निदिन संदालबेन फवका अमानालिन मारते सनेचने तुकुन फनेर टेटे नारो तमनि.